नगर्नेछ तुझे बचारा हो सब मुझे बताओ तेरी फिल्मी सबको बता रहा हूँ तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं सबको बना रहा हूँ वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ तुझे न्यू मोड़ी पसंद है मैं हिंदी खाने चबा रहा हूँ सुनने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी क्या

बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रही, तू भी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं कसम बना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे दिन बहुत पसंद है, मैं दिल्ली खाने से आ रहा हूँ, तुमने में आया है, तू लंदन में रहती है।

धाम साथी धुमधाम राइट कपन नया इभी मेरो टिया इभीसँग लाइट छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the